0: की फतेह।
1: शहीद भाई हरदीप सिंह निज्जर गुरमत स्कूल दे विद्यार्थियों वालों आप जिया नूं रहिरास साहिब जिया दा पाठ सरवण करवाया है। अरदास बेनती बड़ी खुशी हुंदी है जदों साडे छोटे छोटे बच्चे लड़ीवार गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे स्वरूप

0: दे सूर्य में फरतीले पारे
1: गोरे आख्या सिंगा नू कर लो त्यारे गोरे आख्या सिंगा नू

तकरीबन पहले शब्द सत ते ही विश्राम आउणगे। जे कोई अगे पिछे विश्राम आउंदा है जिथे दो वार आउंदा उथे बेनती कीती जावेगी। जेड़ियां पंक्तियां च दो वार सत पद आ रहा है पहले सत पद ते विश्राम जानना।

0: दार्शनिक है, फिलोसोफर है, कवि है, कलम दा धनी है, दिमाग दा धनी है, तान है, मानते होवेगा। अकबर ने अपने दरबार विच बीरबल नूं, मुल्ला दो प्याजा नूं, जनाब फैजी नूं, कवि रहीम नूं, तानसेन नूं रखिया सी। ए बड़े दिमाग दे धनी। अकबर खुद सलाम करदा सी उन्हां नूं, जुक के कहिंदा सी, मेरे दरबार दे कीमती रतन ने, इन्हां तों बिना मेरा दरबार कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उन्हां सारिआं दा अपने वक्त विच बड़ा माण सन्मान सी, क्यों तान सी, अकल दे धनी सन, बौद्धिक बल सी उन्हां कोल, दिमागी तान सी। चौथा तान मनदे ने राजनैतिक तान, कोई कुर्सी है उहदे कोल, हुकमरान है, तो सलामां ते होणगी, सजदे ते होणगे, परकर्मा ते होवेगी। हुण मैं अर्ज करां, जिसनू कहिंदे ने धन दा तान, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਦਫਾ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਚਦੇ ਚ ਬੈਠੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦਮੜੇ ਘੱਟ ਨੇ। रब्बी नेत भाई सोमा जी आ गए, ते सतगुरां दी थैली ने एक पासे करके अपनी थैली रखी, महाराज अज मजदूरां नूं इस थैली चो देओ। ते सतगुरां दी जबान चो निकलिया, तू ते साडा शाह है। उस दिन तो गुरु घर दे च इक बिरादरी चली है, जिन्हां नूं शाह साहब करके कहिंदे ने, सोमे शाह तो चली है। और एक काफी तादाद दे च हरियाणे च इन्हां दे डेरे भी ने, दिल्ली दे च भी है, हरवंत शाह सिंह दा डेरा, डेरा समेल खान कलोनी च, इस तो इलावा होर कई डेरे ने, जींद दे च जीवन शाह सिंह दा डेरा, रुड़की डेरा दून, अलवर दे च सुखदेव शाह दा डेरा। इस सोमे शाह दी अंस ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज तो सुते सिद्धिक, तो साडा शाह है, तो भाई सोमे दा नाम पै गया सी सोमा शाह। बाद शाह इना दी अल बन गई, जात बन गए, गोत बन गए। धन दा तान महाराज कोल नहीं है। दूसरा तान होंदा है तन दा तान, तो महाराज दा शरीर भी आम साधारण शरीरां वर्गा सी, कोई पहलवान नहीं सन। ये भी मैच करते हैं। तीसरा तान आंदा है राजनैतिक, तो महाराज कोई जागीरदार नहीं, कोई हुक्मरान नहीं है, किसी जागीर दे मालिक नहीं है, किसी मुल्क दे हुक्मरान नहीं है। लेकिन हैरानगी सी उस वक्त दे हुक्मराना नूं, सारा जगत जुगदा है, हिंदू झुकते ने, मुस्लिम झुकते ने, मियां मीर जैसा मत्था टेकता है, जमाल हुसैन सजदा करता है, ब्राह्मण मत्था टेकते ने, हिंदू परिक्रमा करते ने, मुसलमान परिक्रमा करते ने, है कि इस फकीर कोल है कि इस तरह का पूछना वकत दे हुक्मराना दा नफरत करके भी हुंदा सी, भई इतने सजदे हो रहे ने, हिंदू झुकदे पए ने, मुस्लिम झुकदे पए ने, ब्राह्मण झुक रहे ने, खत्री झुक रहे ने, शूदर झुक रहे ने, वैश झुक रहे ने, धनवान झुक रहे ने, गुणवान झुक रहे ने, बड़े बड़े हुक्मरान भी सजदा करदे पए ने, जागीरदार मत्था पे टेकदे ने, है कि यह धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपनी बाणी च आप दसै, तान मान दी बाण साचा नानक की प्रभ टेक। जो प्रभु है, प्रभु दा नाम है, बस साडे कोल ही है, और कुछ नहीं। तान है, तान सच दा तान है, साडे कोल परमात्मा दा तान है। तान मान दी बाण साचा नानक के प्रवटे। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे हे प्रभु तू अपने नाम दा ही तान सानू दे, बाकी नहीं। मान मांगो तान मांगो तन लखमी सुत दे। और जेदे कोल रब्बी तान होवे जिंदगी च कदी निमाणा नहीं आउंदा, कदी नहीं आउंदा। जिहड़ा शुरू दे च परमात्मा दा आसरा पकड़ लवे जिंदगी च कदी बेआसरा भी नहीं आउंदा। ये भी मैं अर्ज करदे आं। बाकी आसरे मनुख पकड़दे ने, कई दफा आसरे नहीं रहिंदे। सबो बजे आसरा चूके सब आसरा हो। इहदे उत्ते मैं दलील देना हुंदा, मनुख नूं कोई असाध रोग हो जाए, असाध, तो डॉक्टर जवाब दे जाए, आखे हुण साडे वस दी गल नहीं, तुसी कुछ होर तरीका लभो, फिर ओ आयुर्वेद दा आसरा पकड़दा है। चलो हुण वैदां कोल जाइए, डॉक्टरां कोल ते कुछ नहीं होया। ते आयुर्वेद आचारिया भी कह देन हुण साडे वस दी गल नहीं है, फिर मनुख होम्योपैथी इस ढंग दा जो है सारा पकड़ेगा, उस तो भी गल ना बनी, फिर नेचर पे थी। चलो इहदे नाल मता ठीक हो जाइए, पर नेचर पे थी नाल भी ठीक ना होया, होम्योपैथी भी ठीक ना कर सकी, एलोपैथी भी ठीक ना कर सकी। ते आयुर्वेद आचारिया भी निराश होके कहण लगे नहीं साडे वस दी गल नहीं, फिर मनुख परमात्मा दा आसरा पकड़दा है। और सारे कहंदे ने हुण तू रब दा ही आसरा पकड़, हुण ईश्वर दा। ईश्वर दे आसरे नूं मनुख नूं मनुख अखीर दे च रखदा है। जद सारे आसरे टुट जान, सबो बजे आसरा चूके सब आसरा। पर सतगुरां दी बाणी कहंदी है जो पहले आसरा परमात्मा दा पकड़ लैंदा जिंदगी च कदी भी आसरा नहीं आउंदा, आउंदा ही नहीं, सदा आसरा उसदा बणदा रहिंदा। ते जिहदे कोल रब्बी तान है उह कदी निमाणा भी नहीं आउंदा। तान मान दी बाण साचा नानक की प्रबटेक।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington.
2: Radio Station 1550 AM Gurbani Segment ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਦ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮਾਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1550 AM ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1550 ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 604-961-7790 604-961-7790 1550 AM। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
3: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.

हस्त खेलत तेरे देहरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। मंदिर देच भक्ति कर दें, प्रभु दे गीत गांवदे हां, क्यों उठाए गए, क्यों बाहर कड्डे गए, क्योंकि शूद्र जाति दे सन, ते शूद्र जाति लई मंदिरां दा प्रवेश बंद सी। आप स्वयं कहंदे ने, हस्त खलित तेरे देहरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया, हीनड़ी जात मेरी जात मराया, छीपे के जन्म मुको काहे को आया। भक्ति भाव विच भिजे गीत आप जुगा रहे सन, ते मंदरां विच जो कथा कीर्तन होंदा सी, उस दे जो सुनन दा आप दे अंदर शौक सी, लेकिन ब्राह्मणा दा जो व्यवहार सी, उस तो दुख तो के आप कहिंदे ने, छीपे के जन्म मोको काहे को आया। हे प्रभु, तू छीबे दे घर मैनू जन्म क्यों दिता, क्योंकि भक्ति करन दा अख्तियार लोकी मैनू नहीं देंदे, मंदरां दे चों धक्के मार के कढ़दे ने। लै कमली चलियो पलटाए, देहुरे पाछे बैठा जाए, आखिर अपना चदरा विछा के जिस दे उत्ते बैठा होया सी, उन्नू संभाल के समेट के मंदिर दे पिछवाड़े जा बैठा। आप दा ही वाक है, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे, भगत जना का देहुरा फिरे। जैसे जैसे वो प्रभु दे गीत गाउंदे ने, प्रभु विचलीन होंदे ने, वैसे वैसे मंदिर फिरदा है, और मंदिर दा जो मुख द्वार सी, उस दा मुंह नामदेव जी दी तरफ हो गया, मूर्तियां दा मुंह नामदेव जी दी तरफ हो गया, और पंडियां दी तरफ पिछवाड़ला। फेर दिया नामे को देहुरा, पंडियन को पिछवाड़ला। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा भी फरमान है, हंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम देव मुख लाया। ए मंदिर गौंडा देच अज भी मौजूद है, श्री सचखंड हजूर साहब तो गालबन 40 मील दी दूरी दे, औरंगाबाद रोड देते एक गौंडा नाम दा बहुत वड्डा तीर्थ है। इस औंडा नाम दे तीर्थ दे उत्ते ही श्री नामदेव जी महाराज ने ये प्रभु दे गीत गाए, ते आप नूं धक्के मार के बाहर कढ़िया गया। ये मंदिर इतिहासक मंदिर है, और कस्बे दा नां औंडा है। महाराष्ट्र दे च बेशुमार तीर्थां दे चों ये अस्थान भी तीर्थ सतल करके बहुत मशहूर है, और श्री नामदेव जी महाराज दा भी अस्थान इस मंदिर दे च अज बनिया है। भावें आप शरीरक रूप दे जद मौजूद सन, तां आप नूं धक्के मार के बाहर कढ़िया गया, लेकिन अज उन्हां दी मूर्ति मंदिर दे द्वार तों बाहर स्थापन कीती हुई है, और दूरों ही पुजारी आवाज मार दें, संत नामदेव दे दर्शन करो, संत नामदेव दे दर्शन करो। लेकिन ये अजूबा पृथ्वी ते मौजूद है कि मूर्तियां दा मुंह एक पासे है, मंदिर दा मुंह दूसरे पासे है, और ये अजूबा कहिंदे ने श्री नामदेव जी महाराज करके होया, क्योंकि आप नूं जब धक्के मार के बाहर कढ़िया गया, आप पिछे जा बैठे, तो मूर्तियां ने भी रुख नामदेव दी तरफ ही कर लिया। खैर महाराष्ट्र दे भ्रमण करदे हां, प्रभु गीत गाउंदे हां, आप मनुखता लई एक पवित्र माहौल बना रहे सन। दरअसल भगत दा होना ही वातावरण दा पवित्र होना है, उहदे शरीर दे चों जो लहरां निकलदियां ने, तिरंगा निकलदियां ने, वह आस पास दे माहौल नूं पवित्र करदियां ने। जैसे कि भगत कबीर दा कहना है, कबीर सो मुख धन है, जय मुख कहिए राम, देही किसकी बापुरी, पवित्र होएगो ग्राम। देही दा ते कहना कि एक सुरत होके जो प्रभु गीत उचारण करने ने, प्रभु सिमरन करना है, उहदे नाल ते सारा नगर पवित्र हो जांदा है, सारा शहर पवित्र हो जांदा है। तो नामदेव ने थां थां ते महाराष्ट्र दे भ्रमण करना आरंभ कीता। इस तों बाद आपने समस्त भारत दा वी रटन कीता। दहली दे जद आप आए, ते आप दे
ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਜਦ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਤ ਤੇ ਸਤਾ ਦਾ ਝਗੜਾ। ਵਕਤ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਨੀ ਭੀੜ, ਇਤਨਾ ਇਕੱਠ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਤਾਧਾਰੀ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਨੀ ਭੀੜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭੀੜ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕਪਿਲਾ ਗਊ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਿਵਾ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ, ਹਮਰਾ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਰ ਹੈ ਰਾਮ ਹੋਏ ਹੈ ਸੋਏ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਚ ਆਇਆ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈ ਔਰ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਜ ਹੱਠ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਗਏ। ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਰਾਜ ਹੱਠ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਸ ਦੇ ਚ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਵਾਕਈ ਰਾਜ ਹੱਠ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਆਮਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਹੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ, ਪਰ ਸਤਾਧਾਰੀ ਹੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਤਾ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਝੂਠ ਤੇ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਾ ਤਰਕ ਤਾਜ਼ੀ ਬ ਮਕਰੋ ਰਾਇਆ, ਮਰਾ ਚਾਰਾ ਸਾਜੀ ਬ ਸਿਦਕੋ ਸਫਾ। ਮੈਂ ਸਿਦਕ ਤੇ ਖੜਾ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਖੜਾ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਖੜਾ, ਐ ਸੁਲਤਾਨ ਤੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਖੜਾ, ਫਰੇਬ ਤੇ ਖੜਾ, ਫਰੇਬ ਤੇ ਖੜਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਟ ਹੈ। ਸੱਤ ਤੇ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਤਾਧਾਰੀ ਸਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਸਤਵਾਦੀ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਨਾਮਦੇਵ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਸੀਤਲਤਾ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਮੋਈ ਹੋਈ ਗਊ ਇਹ ਜਵਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਮੋਈ ਹੋਈ ਗਊ ਨੂੰ ਜਵਾਣ ਤੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਨਾੜ ਸੇਠਾਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਲ ਲਾਓ ਤਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਭਰੋ, ਮੈਂ ਦੋਜ਼ਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਧਨ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਈ ਹੋਈ ਗਊ ਨਾਮਦੇਵ ਨਹੀਂ ਜਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਧਨ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਕੱਢੋ, ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਮਾਰਗ ਕੱਢੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਤੀਕਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ
ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਠ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਛੋੜ ਰਾਮ ਕਿੰਨਾ ਭਜੇ ਖੁਦਾ ਹੈ ਛੱਡ ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਰਾਮ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਐਸੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਸਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਧ ਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁੰਦ ਕਾਰਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਧਾਰਾ ਕਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਮਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਨੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਮਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਨੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਤੋ ਮਨੀ ਦਰਿਆਓ ਤੂੰ ਦਹਿੰਦ ਤੂੰ ਬਿਸਿਆਰ ਤੂੰ ਧਨੀ ਦੇਹ ਲੇਹ ਏਕ ਤੂੰ ਦਿਗਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਬੀਨਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਆ ਕਰੀ ਨਾਮੇ ਚੇ ਸੁਆਮੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਤੋਂ ਹਰੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਕਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਮਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਬਨੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਤੋ ਮਨੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਧੁਨ ਰਟਦਾ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਕਰੀਮ ਕਰੀਮ ਰਹੀਮ ਰਹੀਮ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਦ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਚ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਖਾਂਗਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਚ ਜੇ ਅੱਜ ਆਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜਬਰ ਹੇਠ ਅੱਜ ਆਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ। ਤੋ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਾਂਗਾ ਮੌਜ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਤ ਘੜੀ ਜਬ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ ਅਜੂ ਨਾ ਆਏ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਧਨੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਛੋੜਦਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਨਕਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਈ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਈ ਹੋਈ ਗਊ ਉੱਠ ਖੜੋਈ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਸੂਲ ਪੈ ਗਏ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਮੋਈ ਹੋਈ ਗਊ ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਅਥਾਹ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ ਪਛਤਾਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕੀਤੀ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜਾ। ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਰ ਵਾਪਸ ਪੰਡਰਪੁਰ ਆਏ। ਪੰਡਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਨਾਲ ਉਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਔਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੰਡਰਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਛੀਂਬਾ ਨੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੰਭ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਇਹ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸੀ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੇ ਗੀਤ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਖਿਲੇਰੇ ਕਿ ਪੰਡਰਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਪ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਤਾਰਕਿਕ
पुरोहित लोगों ने विद्वाना ने आप तो पूछया कि तुसी अपना हिरदा प्रभु नाल किवें जोड़े की युक्ति है की युक्ति है आखिर ढंग की वरते है तौर तरीका की वरते है। तौर तरीका कबीर तो भी किसी वक्त पूछया गया सी ता आपने साफ कह दिता सी तज भरम करम बिद निखेद राम नाम ले ही गुरु प्रसाद जन कबीर राम कर सने बिद निखेद बिधि निषेद कोई विधि नहीं है कोई ढंग नहीं है। कबीर कहते हैं कोई ढंग नहीं है। भरे आया ठंडा पानी दा गिलास मनुख दे अगों रख दे ते ओ पीण दा ढंग पुछे विधि विधान पुछे कि पीण दा ढंग की है विधि की है तो गल स्पष्ट हो गई कि इस बंदे नूं प्यास नहीं लगी। 36 प्रकार दा भोजन परोस के किसे मनुख दे अगों रख दे ते ओ ए आखे कि छकण दा ढंग की है भोजन करन दा ढंग की है ते गल स्पष्ट हो गई इसनूं भुख नहीं लगी। भूखे खावत लाज ना आवे भुखा मनुख ढंग नहीं पुछदा हुंदा तौर तरीका नहीं पुछदा हुंदा ओ छकण लग पैंदा खाण लग पैंदा है। ढंग तौर तरीके दा पुछना ही इस गल दा सबूत है कि इसनूं भुख नहीं लगी। श्री नामदेव जी महाराज तो यह पुछ कीती गई ढंग की है तौर तरीका की है। कबीर कहते हैं जब मनुख दे अंदर सत्संग कर दें प्यास पैदा होती है भुख पैदा होती है ते भुख पैदा होते ही ओ ईश्वर दे गीत अलापन लग पैंदा है ओ ईश्वर दा नाम उचारण करन लग पैंदा है। जैसे भुख लगे ते बच्चा रोन लग पैंदा है सत्संग विच बैठदियां बैठदियां जद सत दी भुख पैदा होती है ते रसना अपने आप ही सतनाम सतनाम उचारण करन लग पैंदी है। तरीका आपदे कोल पुछया गया दसो नाम देव तुसी अपना हिरदा परमात्मा नाल किवें जोड़े है। आखिर एक नियम है कि दोहां नूं जोड़न लई तीसरे दी लोड़ पैंदी है। दो इट्टां नूं जोड़ना है गारा चाहीदा है दो कागज जोड़ने ने गोंद चाहीदी है दो कपड़ियां नूं जोड़ना है सुई धागा चाहीदा है दो लकड़ां नूं जोड़ना है सरेस चाहीदी है। तुसी अपना हिरदा प्रभु नाल जोड़े है किवें जोड़े है तो आपदा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च बड़ा कीमती वाक है कि सोए ने की सोई रुपे का धागा नामे का चित हरसों लागा। नामदेव ने अपना चित हरी नाल जोड़ लिया किवें जोड़े है किस तरह जोड़े है सुई धागे नाल सी लिया सुई केड़ी सोने दी धागा केड़ा चांदी दा सोयने की सुई रुपे का धागा नामे का चित हरसों लागा। सोने दी सुई की है गुरु दा शब्द गुरु दा मंत्र गुरमन मंत्र ए सोने दी सुई है। धागा की है उहदे च ध्यान जोड़ना उहदे च सुरत जोड़नी ए धागा है। जैसे वाहेगुरु वाहेगुरु दा उचारण करिए इते सोने दी सुई है पर इहदे च ध्यान जोड़िए ए धागा है ते ध्यान दे नाल ही मनुख सुन सकेगा उंज सुन भी नहीं सकेगा। जैसे कि एक उच्ची उच्ची बोल रहा हुंदा है दूसरा सुन रहा हुंदा है ते सुनन वाला अचनचेत कह देंदा मित्रा ए गल फिर आखो नहीं सुनी क्यों नहीं सुनी कहिंदा मेरा ध्यान किसे होर पासे चला गया। तो ध्यान धागा है इसनूं गुरु नानक देव जी महाराज इंज कहिंदे ने धुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। तो गुरु दा जो मंत्र है इस सोयने दी सुई है और इस दे विच जो मैं अपनी सुरत जोड़ी है ध्यान जोड़िया है ए धागा है सुई चलदी रही धागा नाल चलदा रहा मेरा हिरदा प्रभु दे नाल सिलदा गया जुड़दा गया। आम जगत विच देखण विच आया कि मनुखां कोल सुई ते है धागा नहीं राम राम रटन कर रहे ने ध्यान नहीं है वाहेगुरु वाहेगुरु दा उच्चारण कर रहे ने ध्यान नहीं है। तो सोने दी सुई ते चल रही है धागा नहीं है बिन धागे बिन सुई आने धागे तो बिना सुई की करे किस तरह सीवेगी किस तरह जोड़ेगी
तो धुन देच ध्यान दा जोड़ना, शब्द देच सुरत दा जोड़ना, मंत्र देच ध्यान दा जोड़ना, इंज है जैसे सुई देच तागा जो है परोरना। इस ढंग नाल जद सुई चलदी है ते नाल तागा चलदा है, मनुख दा हिरदा प्रभु नाल जुड़ जांदा है। यही आप कह रहे ने, सोईने की सुई रुपे का धागा, नामे का चित हर सौ लागा। हरी नाल चित जुड़ गया ते हरी ते आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप नाल जुड़दिया ही आनंदमयी अवस्था मनुख दी बन जांदी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा भी फरमान है, चित्ते चित मिलाए ता होवे रंग घना, परमात्मा दे चित नाल तू अपना चित जोड़, अथा रंग बनेगा, अथा सुख बनेगा। क्यों के मित का चित अनूप सो मरम न जाने, परमात्मा दा चित अति सुंदर है, आनंदमयी है, रहस्यमयी है, गुण निधान है। प्रभु दा ऐसा चित जेद सारे गुण ने, सारा आनंद है, सारिया सुगंधियां ने, सारा खेड़ा है, सारा स्वपन है। जैसे कोई प्रभु दे चित नाल अपना चित जोड़दा है, जगत दी सारी स्वपन नाल उसने अपना चित जोड़िया, जगत दे सारे संगीत नाल उसने अपना चित जोड़िया। जैसे उस परम संगीत दे नाल ते परम स्वपन दे नाल चित जुड़दा है, मनुख दे अंदर भी परम स्वपन ते संगीत दा जन्म होंदा है। मित का चित अनूप सो मरम न जानई, गाहक गुनी अपार सो तत्व पछानई, चित्ते चित मिलाए ता होवे रंग घना, हरहा चंचल चोरे मार ता पावे सुख घना। चूंकि परमात्मा दे चित देच परम नाद है, परम संगीत है, उस नाल जुड़दे हां, परम संगीत दियां धुनियां मनुख दे अंदर वजनियां शुरू हो जांदियां ने। उसदा जिक्र श्री नाम देव जी महाराज अपनी बाणी च इंज करदे ने, अणमणिया मंदल बाजे बिन सावन घनहर गाजे, बादल बिन बरखा होई जो तत बिचारे कोई। मेरे अंदर एक ढोल वज रहा है, नामदेव कहंदे ने, लेकिन वह चमड़े का मड़िया होया नहीं है, पर वज रहा है, अठे पैर वज रहा है, बड़े सुर दे च वज रहा है, बड़े ताल दे च वज रहा है। अणमड़िया मंदल बाजे, अज तक दे तमाम सिरमोर भगतां ने ऐसा आख्या है कि साडे अंदर संगीत दी धुन चलदी है, राग दी धुन चलदी है, ते राग दे जन्मदाते भी संत लोग ने, भगत लोग ने। दरअसल परमात्मा की है परम सुंदरता और परम संगीत, परम रस, परम आनंद। परमात्मा नाल जुड़ना परम आनंद नाल जुड़ना है, परम संगीत नाल जुड़ना है, महान स्वपन नाल जुड़ना है। ये ठीक है कि पुराने समय दे वैदिक ऋषियां ने भी जो ईश्वर दे गुण मने ने इस ढंग नाल मने ने, सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य है, शिवम वो प्रकाशमान है, सुंदरम वो अति सुंदर है। सत चित आनंद वो सत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सत सुहान सदा मन चाओ। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, वो सत है सुहान, वो अति सुंदर है, सदा मन चाओ वो सदीवी खिड़िया है, उसदे चित दे सुंदरता है, दैवी गुणा दी स्वपन है, परम संगीत है। तो परमात्मा नाल जैसे कोई जुड़दा है, परम संगीत नाल जुड़दा है, परम स्वपन नाल जुड़दा है, परम आनंद नाल जुड़दा है। इस वास्ते नामदेव जी महाराज कहंदे ने कि मेरे अंदर परम आनंद दी छाप लगी है और मेरे अंदर दैवी गुणा दी परम सुंदरता प्रगट होई है। आप ते साफ कहंदे ने, प्रण में नाम देव ना के बिना ना सोहे बत्ती लखना। शरीरक तल ते अगर सुंदरता दे बत्ती लखण भी मनुख दे कोल आवन, पर दैवी सुंदरता दैवी गुणा दा जो स्वपन है ए बंदे कोल ना होवे तो 32 लक्षण भी किसे काम दे नहीं। कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, नाम बिना सब कुबज करूप। भावे कितना ही सुंदर होवे, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। तो नामदेव जी महाराज कहंदे ने मेरे अंदर परम स्वपन पैदा होया है और परम आनंद पैदा होया है, ते परम संगीत दियां धुनियां मेरे अंदर पैदा हो गई ने, नाद वज रहा है। अणमणिया मंदल बाजे बिन सावन घन हर गाजे, बिना सावन तो
मेरे अंदर बदल गरजदे पैने, कबीर अंबर घनहर छाया, बरख बरे सरताल, चात्रिक ज्यों तरसत रहे, तिनको कौन हवाल, गुरु रूपी बदल मेरे अंदर गरज रहे, परमात्मा दा गर्जन शुरू है, और अमृत नाम दी बरखा मेरे हृदय ते हो रही है, परम संगीत परम नाद मेरे अंदर छिड़े होया है, और इथों गल स्पष्ट हो गई, प्रभु नाल जुड़ना परम संगीत नाल जुड़ना है, परम हरियावल नाल जुड़ना है, परम आनंद नाल जुड़ना है, परम स्वप्न नाल जुड़ना है। श्री नामदेव जी महाराज दे अंदर भावना प्रधान है। दरअसल भगत नामदेव जी महाराज भावना प्रधान पुरुष ने, ते जिथे भावना प्रधान है, जज्बे प्रधान ने, बस ओही भगत है। दो तरह के मनुख ने, कोई अकल दे तल ते जीवंदा है, कोई हिरदे दे तल ते जीवंदा है, कोई बौद्धिक तल ते जीवंदा है, कोई दिल दे तल ते जीवंदा है। जीवन दे ए दो ढंग ने। जो बौद्धिक तल ते जी रहा है, उस दे अंदर विचार प्रधान होवेगी। जो हिरदे दे तल ते जी रहा है, उत्थे भाव प्रधान होवेगा। पर जो ना बौद्धिक तल ते जी रहा है, ते ना हिरदे दे तल ते जी रहा है, वह मनुष्य ही नहीं है, वह पशु है। पशु इन्हां दोहां थल्लां तो थल्ले ही जीवंदा है। इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है, भाव प्रधान है कि विचार प्रधान है? दरअसल विचार नाल वस्तु

अरे संबंध सुख दाय सुख में आन मिलत बहु बैठत रहत चहूं दिस गहरे। तो साहेब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बच्चे शहीद हो गए, पिता शहीद हो गए, ते आप दावे नाल कहन चाह शुद के चूं बच्चे गां कुश्ताचार के बाकी बमान दस्त पेची दामार चे मर्दी के अहगर खमोशां कुनी के आतिश दामारा फिरोजा कुनी की होया के बलदे हुए भांबणा दे चों चार चिनगारियां बुझ गईयां। ए सब कुछ उना लई एक तमाशा है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान के प्रचलित गाथा ते ए है और खास करके योगियां दे प्रचार दे च ए खास गल आई के ए मादा ए माया जुगती नाल प्रसूत होई व्याई और उस तो तीन प्रमाणिक चेलिया ने जन्म लिया जेदे च एक संसारी है, एक भंडारी है और एक लय करण वाला है, एक परले करण वाला है। पर हकीकत की है साहिब कहने ज्यों तिस भावे तिवें चलावे ज्यों होवे फुरमान। हकीकत यह है कि परमात्मा जिवें चाहुंदा है तिवें अपनी प्रकृति नूं चला रहा है, जिवें उसका हुक्म है तिवें जगत विच सब कुछ जो है हो रहा है। उस तो बिना होर कुछ नहीं, उस तो ही उत्पत्ति हो रही है, उस तो ही पालना हो रही है, उस तो ही नाश हो रहा है, क्योंकि उसका कोई मुद्दा नहीं, उसलिए सब कुछ तमाशा है, उसलिए सब कुछ एक खेल है। एक मिथ है बड़ी सुंदर कि एक दफा शिवजी ने प्रार्थना की, हे अकाल पुरख कि तू मेनू जिहड़ी ये सेवा बख्शी है मौत दी, मैं जिस घर विच जाना रोना पिटना शुरू हो जाता है, यह मैनू चंगा नहीं लगता, ते मेरी सेवा बदल दिती जाए। जिहड़ा काम इंद्र नू सौंपिया गया बरखा करन दा, यह काम मैनू दिता जाए। तां परमात्मा ने आखिया, शंकर बरखा करनी तेरे सुभा दे अनुकूल नहीं, मौत करनी तेरे सुभा दे अनुकूल है, ते असी कम दिता है तेनू तेरे सुभाव दे अनुकूल। पर शिव जी ने हट कीती, नहीं जे बरखा इंद्र कर सकदा है तो मैं क्यों नहीं कर सकदा, मेरी झोली च यह सेवा पाई जाए। बहुते तरले करके हट करके परमात्मा ने यह सेवा झोली च पा दिती। अच्छा हुण आईंदा तो बरखा तू करेगा। शिव जी ने यह वर प्राप्त किया, जब मैं डमरू वजावा उदो ही बरखा होवे, उस तो पहले नहीं होनी चाहती। तथा उस तू कर दिता गया, ठीक है तू डमरू वजाएगा बरखा होवेगी। मात लोग दे आए शिव जी, मिथ्यास किसान लोग हल चला रहे सन, तो शिव जी कहने लगे सुनो हल ना चलाओ, क्यों 13 साल तक मी नहीं पैना, बरखा मेरे हाथ च है, लेके वर आया है बरखा दा, कर रहा है मौत अपने स्वभाव दे मुताबिक। 15 दिनां बाद जब फिर उत्थों लंघिया ते किसान बीज पै पावन, ते शिव जी गुस्से च आके कहन लगे जद मैं कह दिता है 13 साल तक मी नहीं पैना, ते बीज क्यों रोल रहे हो जमीन विच, क्यों नाश कर रहे हो, क्यों अपना नुकसान कर रहे हो। तो किसान कहन लगे जे रब चाहेगा ते बिना मी ते भी बीज उगाणगे, ते जे हुण ना भी उगे ते 13 साल बाद मी पैना है, ते 13 साल तक असी बीज बोया ना हल चलाया ना, तो असी ते हल चलाना भुल जावांगे, साडी संतान भुल जावेगी, असी खेती बाड़ी दा काम ही भुल जावांगे। थोड़े जिहा शिव जी अगे चले गए, रुख दे थले बैठे, ते ख्याल आया जे किधरे मैं 13 साल डमरू वजाया ना ते मैं वजाना भुल जावांगा। तो एकदम झोली देखों डमरू कढ़िया और उन्हूं वजाण लग पे, ते वजांदे आई मीह पै गया। गुस्से च आए भी मेरी चाहत तो बिना किस तरह होया, अलहाम होया, आकाशवाणी हुई, तू ही वर लिया सी जद मैं डमरू वजावा उदो बरखा होवे, तो हो गई है बरखा। शिव जी दे हाथ जुड़ गए, कहन लगे नहीं इत्थे दो कुछ तू चाहना है ओही कुछ आंदा है, जो कुछ असी चाहते हैं ओ कुछ नहीं आंदा। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान पे करदे ने, ज्यों तिस भावे तिवें चलावे ज्यों होवे फरमान। जिवें उस नूं भावदा है ते जिवें उसका हुक्म है तिवें ही ओ जगत नूं चला रहा है, ते तिवें ही उसे तरीके नाल ही जगत विच सब कुछ हो रहा है। ओ वेखे ओना नदर ना आवे
بہت

जे धन पले पाए पर साहब कहने सो धन मित्र ना कांडिए उस धन उस पदार्थ नू किवें मित्र समझे जित सिर चोटा खाए अगला बचन कहे जिनके पले धन वसे इत्थे धनदार ते दुनिया दा धन जिन्ना लोकां दे कोल केवल दुनिया दे पदार्थ ने तिनका नाउ फकीर फकीर दा अखरी अर्थ इत्थे वे मंगता फकीर दर ते दर दर दा मुथाज जिन्ना लोकां दे कोल केवल धन कहे ओ दर दर दे मुथाज ने पर जिनके हिरदे तू वसे ते नर गुणी गहीर जिन्ना दे हिरदे विच मेरे साई जी तुहाडा नाम वस जाए ओ सज्जन गुणा दे खजाने बन जांदे ओ अमोलक बन जांदे ने। जेड़ी बेनती मैं कर रहा सा कि चबन चलन रतन से सुनियर बह गए चबन वाले दंद मौत तो पहला चले गए पैरां नाल असी तुरदे सा असल विच ओ पैर भी चले गए ते बाबा साहब दा मैं प्रमाण अर्ज कर रहा सा सराहणे प्राण पानी दा कुजा पिया ते पैरां विच सत्या नहीं ते ओही महापुरश बोल के कह रहे ने फरीदा हजूर दा बचन इन्नी निक्की जंगी है इन्नी निक्की जंगी है थल डोंगर पव्योम अज फरीदा कुजड़ा सह कोहां थियोम अज पानी दा कुजा भी सैकड़े को दूर पासदा है। दंद चले गए प्यारियो पैर चलन वाले चले गए रतन दा अखरी अर्थ चमक दियां होईयां हीरे वर्गियां अखां दी जोत चली गई सुनियर दा अखरी अर्थ सुन वाले कन चले गए चबन चलन रतन से सुनियर बह गए अज शरीर मंजी ते पे ते बाबा साहब कहन लगे खेड़े मुत्ती ता खेड़े दा अखरी अर्थ शरीर मुत्ती दा अर्थ मारी कहन लगे शरीर मंजे ते पिया उच्ची सारी ढाहा मारदा पिया ते कह रहा से जानी चल गए जानी दर ते प्यारे के जेड़े इंद्रे मेरे नाल आए हे मेरे रब जी ए प्यारे ता मैनू पहले छड़ के चले गए। एक शब्द तुसी गुरु ग्रंथ साहिब विचो पढ़दे ते अक्सर ए शब्द जदों किसे दी मौत हुंदी ए ते असी कहने मियां भाई साहिब जी इस शब्द नू जरूर पढ़ो ओ शब्द दियां दो तुकां तुहानू सब नू चेते ने कि कहत कबीर सुनो रे संतो खेती करो नबेरा अब की बार बख्श बंदे को बौर ना पवजल फिर भावे असी इस शब्द के अर्थ मौत नाल संबंधित करने हैं पर सच जानो एदे अर्थ ने अखी देख ना रजियां बौ रंग तमाशे एदे अर्थ जिउंदे बंदे नाल ने मरण तो बाद अरदास नहीं केवल सच जानी तेनू जिउंदे जी ए अरदास करन दी जात आ जाए। इस पूरे शब्द के अर्थां नू कदी वाचिए साहिब बख्शिश करदे ने देही गावा गावा नहीं देही गावा गाम शरीर एक पिंड है एक नगर है एक शहर है जियो धर्म मैं तो एदे विच जिंद जेड़ी ओ चौधरी बन के बैठी है देही गावा जियो धर्म मैं तो बसें पंच किरसाना इस देही विच पंच किरसान रहिंदे ने जेड़े तन दी धरती नू रोज वांदे किरसान दे हथ विच ओदी मर्जी ए धरती नू वाह के ओदे विच अमृत वर्गे बीज बीज देवे ओदी मर्जी ए के धरती नू वाह के ओदे विच जहर पैदा कर दे। पंज किरसान ने शरीर धरती है देही गावा जियो तर महतो बसे पंच किरसाना केड़े पंज किरसान ने नैनू अखी वेख न रजियां बो रंग तमाशे नैनू नकटू सर्वनू इंद्री रसबत कह लगे ए अखा ए कान ए नेतर ए जेड़े पंज किरसान ने ए साडे अंदर नू मानदे नहीं देही गावा जियो तर मैं तो बसे पंच किरसाना नैनू ए अखा नकटू सर्वनू इंद्री रसबत इंद्रियां जेड़े दुनिया दे रस विच खचत ने वह गुरु जी इंद्री कहा न मन ए इंद्रियां जेड़िया ने कह कोई नू मन दिया ने उस एक बाबा जी ने बचन किया है कहन लगे बाबा अब ना बसो ए गाँव हुन इस शरीर विच मैं रहना नहीं केड़ी थां ते रहना जे इस शरीर विच नहीं रहना वाहिगुरु मेहर करे शरीर विच रह के भी सानू शरीर तो उपर रहन दी जाच आ जाए रहिए असी शरीर विच पर शरीर तो उपर उठ के रहन दी जाच आ जाए। बाबा अब ना बसो ए गाँव क्यों करी करी का लेखा मांगे कायत चेतू ना जदो अंतला समा आया प्यारियो इन्हां इंद्रियां ने

0: ਪਦੀ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ
0: ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤਨ ਲਾਵਹੇ
0: ਜਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੇ ਸੁਖ ਮੰਦਰ
0: ਜਿਸੈ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸਨ ਸੁਖ ਬਸਨਾ
0: ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋਤ ਸਰਸਨਾ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਨ ਜੋਗ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵਹੇ
0: ਜਿਸੈ ਤਿਆਗਤ ਔਰ ਲੁਭਾਵੇ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕ ਜਸ ਕਵੀ ਜੈ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਲ ਸਭ ਕੋ ਮਨ
0: ਮੁਕਤਾ ਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ
0: ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਰੱਬ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ ਪਾਵਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇ ਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੋ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ
0: ਨਿਬਲਾ ਬੁੱਧ ਸਰਾਮ ਸਨੇਹੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਹੋਲਾ ਰਹਿਤ
0: ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ
0: ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ
0: ਮਨ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਭੂਖਨ ਪਹਿਰੀਜੈ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀਜੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵਰ ਸਵਾਰੀ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭੋ ਕਭੂ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਧਨਾ
0: ਰਾਗ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ
1: ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ
0: ਉਠਤ ਬੈਠ ਸਤ ਸਹਿ ਧਿਆਈ
1: ਕਿਸੇ ਧਿਆਈ ਜੋ ਏਕ ਲਖੈ
0: ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸਕਾ ਧਿਆਨ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ
0: ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਤਾਰੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਤ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨਹਿ ਕਰਨ ਨਾਦ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖੈ ਵਿਸਮਾਦ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਵਸਨਾ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਹੈ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵਹਿ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ
1: ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਬਰ ਕਤ ਲਾਗੋ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ
0: ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਦੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਕੋ ਜਾਪ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ
0: ਇਸੇ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਹਿਸਾਚ
0: ਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਉ ਰਾਜ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ
1: ਆਪ ਜਪਾਈ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ
0: ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ
1: ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤੂਤਨ ਹੋਏ
1: ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ
0: ਆਪੋ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਲਿਆ
1: ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਲੱਗੇ ਹਰਨਾਥ
0: ਨਾਨਕ ਇਨਕੈ ਕਛੂ ਨਹਾਥ ਸਲੋਕ
1: ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸੁਮੁਖਤਾ ਹੋਏ
0: ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਰ ਸਗਲੀ ਖੋਤ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੀਰਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤਨ ਬੇਰਾ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਏਕੋ ਉਪਰ ਜਤਨ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਹਿ ਸਮਾਨੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਆਵਹਿ ਬਸ ਪੰਚਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਕਥੂੰ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਤਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਮੀਤ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਮਹਾਪੁਨੀਤ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸੋ ਨੀ ਬੈਰ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਵੀਗਾ ਪੈਰ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਤੇ ਜੈਸਾ ਵਿਆਪ
1: ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਪੜਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾਈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਭੂ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਮਹਿਰ ਪਹੁੰਚੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰ ਹੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਧਨ ਬੀਤ ਕੁਟਮ ਨਿਸਤਾਰ ਹੈ
1: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ
0: ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸੋ ਬਸੁਰ ਦੇਵਾ
1: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਗਲ ਜਨਮ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਕਾਲ
0: ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋ ਤਨਹਾਲ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਕਲੂਕ ਤਹਰੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ
1: ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋ ਹੀ ਫਲ ਪਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਤ ਬਸੈ
0: ਨਾਨਕ ਕੁਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਣ ਰਸੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਉ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਘੜ ਘੜ ਜੀਠਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ
0: ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੈ
0: ਜਿਤਾ ਸੁਣੈ ਤਿਤਾ ਬਖਿਆਨੈ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਊਚੀ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ ਸਲੋਕ
1: ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ
0: ਅਵਰ ਨ ਪੇਖੈ ਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ
1: ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ
0: ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ
0: ਜੈਸੇ ਜਲ में कमले ले
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
0: जैसे सूर सर्व को सुख
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
0: जैसे राज रंक को लागे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक
0: ज्यों बसदा को खुद को चिंतन ले
1: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ
0: नानक ज्यों पाप का सह स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
0: जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
0: जैसे तर ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा
0: मन अपने है सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भये
0: नानक जन प्रव्याप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना
0: आत्म रसन ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा
0: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय सुफला
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अंगुद त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के कल सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी के होय अचिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है
0: ब्रह्म ज्ञानी को बरबल जाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे है महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगलवान माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदा अखर
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता
0: ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुख विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार
0: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक
1: और तारै जो अंतर नाम सर्व में भिख पकवान निमक निमक
0: ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तार अष्टपदी
1: मिथ्या नाही रसना परस
0: मन में प्रीत नरंजन दर्श
1: कर्त्या रूप न भिख नेत्र
0: साध की टहल संत संग हेत
1: कर्ण न सुने काहू के निंदा
0: सबते जाने आप को मंदा
1: और प्रसाद विख्या पर हर है
0: मन की वासना मन ते टर
1: इंद्री जत पंच दोख ते रहत
0: नानक कोट मदे को ऐसा परस
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: विष्ण की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म कर्त हो वह ने कर्म
0: इस वैष्णव का निर्मल धर्म
1: काहू फल की इच्छा नहीं बंश है
0: केवल भगत कीर्तन संग रचय
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप दृढ़ अबराह नाम जपावे
0: नानको वैष्णव परम गत पावे
1: भगवती भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्याग दुष्ट का संग
1: मन से बिन सह सगला परम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवे
0: इस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नित नीत
0: मन तन अर्पय विष्णु प्रीत
1: हर के चरण हृदय बसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है
0: राम नाम आत्म सुध है
1: राम नाम सार रस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
1: हर की कथा हृदय बसावे
0: सो पंडित फिर जो न आवे
1: वेद पुराण सिमरत बूझे मूल
0: सुख मैं जाने अस्तूर
1: चौवरना को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदा आदेश
1: बीज मंत्र सर को ज्ञान
0: चौवरना में जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: साध संग पावे जन कोए
1: कर कृपा अंतर उरतार है
0: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतार है
1: सर्व रोग का यो खद नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण काम
1: काहू जुगत कितने न पाइया धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम तिस नदरी आया
0: दास संतन पाए तन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास दरगाह परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: जिस दास को सब सोजी पर है
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: सब की आज्ञा आत्म हितावे
0: जीवन मुक्त सो कहावे
1: ऐसा हरक तैसा उस होग
0: सदा अनंत नहीं वियोग
1: ऐसा स्वर्ण तैसी उस माटी
0: ऐसा अमृत तैसी बिकाटी
1: ऐसा मान तैसा अभिमान
0: ऐसा रंग तैसा राजान
1: जो बरताए साई जुगत
0: नानक को प्रख कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाऊं
0: जित जित कर रखे तैसा तरना
1: आपे कर्म करावन जोग
0: भावे सोई पन होग
1: असरे आप हो अंत तरंग
0: लख न जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दे तैसा प्रकाश
0: पार ब्रह्म करता अविनाश
1: सदा सदा सदा दयाल
0: सिमर सिमर नानक पहे निहाल श्लोक
1: उस्तत करे अनेक जन अंत न पारावार
0: नानक रचना प्रभ रची बहुत दयनक परकार अष्टपदी
1: कई कोट हो पुजारी
0: कई कोट आचार व्यवहारी
1: कई कोट भय तीर्थ वासी
0: कई कोट बन प्रमय उदासी
1: कई कोट वीर के स्रोते
0: कई कोट तपीसर होते
1: कई कोट आत्म ध्यान धारी
0: कई कोट कब काव विचारे
1: कई कोट नवतन नाम त्या वहे
0: नान करते का अंत न पावे
1: कई कोट भय अभिमानी
0: कई कोट अंध अज्ञानी
1: कई कोट कृपन कठोर
0: कई कोट अभिग आत्म ने
1: को कई कोट पर दर्भ को हिरहे
0: कई कोट पर दुख न करें
1: कई कोट माया श्रम माहे
0: कई कोट पर देश परमा है
1: यत जत लाभ होते तित लगना
0: नानक करते की जाने करता रचना
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी
0: कई कोट राजे रस भोगी
1: कई कोट पंखी सर्प उपाए
0: कई कोट पात्र वृक्ष न बुझाए
1: कई कोट पवन पानी में संतर
0: कई कोट देश भूमंडल
1: कई कोट शशि सूर नक्षत्र
0: कई कोट देव दानव इंद्र शिर छत्र
1: सगल समग्री अपने सूत धार
0: नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार
1: कई कोट राजस्थान सातक
0: कई कोट वेद प्राण समृति अर शास्त्र
1: कई कोट की रतन समुंद
0: कई कोट नाना प्रकार जंत
1: कई कोट की चिर जीवे
0: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे
1: कई कोट जख के निर्पसाच
0: कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगा
1: सबे नेरा सब हूं ते दूर
0: नानक आप लिपतरे प्रभुर
1: कई कोट पाताल के वासी
0: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी
1: कई कोट जन्म है जीवे मर है
0: कई कोट बहुजोनी फिरे
1: कई कोट बैठ सही खाहे
0: कई कोट काले तक पाहे
1: कई कोट की ये धनवंत
0: कई कोट मैं चिंत
1: जय जय भाणा तह तह राखी
0: नानक सब कुछ प्रभ के हाथे
1: कई कोट भय बैरागी
0: राम नाम संग तन लिव लागी
1: कई कोट प्रभ को खोजंते
0: आत्म मह पार ब्रह्म लहंते
1: कई कोट दर्शन प्रप्यास
0: जिनको मिलियो प्रभ विनाश
1: कई कोट मांगे हैं सत्संग
0: ब्रह्म तिन लगा रंग
1: जिनको होए आप सो प्रसन्न
0: नानक तेजन सदा तन तन
1: कई कोट खानी अर खंड
0: कई कोट आकाश ब्रह्मांड
1: कई कोट होए अवतार
0: कई जग की विस्तार
1: कई बार पसरियो पासार
0: सदा सदा एक एक अंकार
1: कई कोट कीने बो भांत
0: सत्य होए प्रभ माहे समात
1: ताका अंत न जाने कोई
0: आपे आप नानक प्रभ सोए
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास
0: हो वत्या तम प्रगास
1: कई कोट तत्व के बेते
0: सदा नहार एको नेत्रे
1: कई कोट नाम रस पीव है
0: अमर भय सद सद ही जीव है
1: कई कोट नाम गुण गावे
0: आत्म रस सुख सहज समावे
1: अपने जन को साथ साथ संभारी
0: नानक को हे परमेश्वर के प्यारे श्लोक
1: करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई
0: नानक तिस बलहार ने जल थल मैयल सोए अष्टपदी
1: करन करावन करना जोग
0: ज्योत सुभाव सोई होग
1: फिर मैं थाप को थाप नहारा
0: अंत नहीं किस पारा वारा
1: हुक्मे धार अधार रहावे
0: हुक्मे उपजे हुक्म समावे
1: हुक्मे ऊच नीच व्यवहार
0: हुक्मे अनक रंग प्रकार
1: कर कर दिखे अपनी वडियाई
0: नानक सब में रहा समाई
1: रब भावे मानो गत पावे
0: रब भावे ता पाथर त्रावे
1: रब भावे बिन शास्ते रखे
0: रब भावे ता हर गुण पाखे
1: रब भावे ता पत उधार है
0: आप करे अपन विचार है
1: दोहा श्रिया का आप स्वामी
0: खेले से अंतर जामी
1: जो भावे सो कार करावे
0: नानक दृष्टि और न आवे
1: बहु मनुख ते क्या होए आवे
0: ज्योत भावे सोई करावे
1: इसके हाथ होए ता सब पिछले
0: ज्योत भावे सोई करे
1: मन जानत बिखिया मह रचे
0: जे जानते अपने आप बचे
1: भरमे भूला दस दिस धावे
0: नमक माहे चार कुंड फिर आवे
1: कर कृपा जस अपनी भक्त दे
0: नानक ते जन नाम मिले
1: छिनवे नीच कीट को राज
0: बार ब्रह्म गरीब नवाज
1: जाका दृष्ट कछु न आवे
0: जिस तत्काल दर दिस प्रगटावे
1: जाको अपनी करे बख्शीस
0: ताका लेखा न कने जग
1: जीओ पिंड सब तिसकी रास
0: कट पूर्ण परम प्रगास
1: अपनी बनत आप बनाई
0: नानक जीवे देख बढ़ाई
1: इसका बल नाही इस हाथ
0: कर्ण करावन सर्व को नाथ
1: आज्ञाकारी बपरा जीओ
0: ज्योत स्वभाव है सोई फन थी
1: प्रभु ऊच नीच मैं बसे
0: प्रभु सोग हर करंग हसे
1: प्रभु निंद चिंद व्यवहार
0: प्रभु उपकाश प्याल
1: प्रभु बेता ब्रह्म विचार
0: नानक आप मिलावन हार
1: प्रभु नृत्य करे बहु भांत
0: प्रभु सोए रहे दिन रात
1: प्रभु महा क्रोध विकराल
0: प्रभु सर्व की होतर वाल
1: प्रभु होए बह बड़ राजा
0: प्रभु भिखारी नीच का साजा
1: प्रभु अब कीर्त में आवे
0: प्रभु भला भला कहावे
1: ज्यों प्रभु राखे ते भी रहे
0: गुर प्रसाद नानक सच कहे
1: प्रभु होए पंडित करे बख्यान
0: प्रभु मोहन तारी लावे ध्यान
1: प्रभु तट तीर्थ स्नान
0: प्रभु सत साधक मुख ज्ञान
1: प्रभु कीट हस पतंग होए दिया
0: अनक जोन भर में परमिया
1: नाना रूप जो स्वांगी दिखावे
0: जो प्रभु भावे तवे न जावे
1: जो भावे सोई होए
0: नानक दूजा अवर न कोए
1: प्रभु साध संगति पावे
0: उस स्थान ते बौर न आवे
1: अंतर होए ज्ञान प्रकाश
0: उस स्थान का नहीं विनाश
1: मन तन नाम रते एक रंग
0: सदा बसै पर ब्रह्म का संग
1: ज्यों जल मह जल आए कटाना
0: ज्यों ज्योति संग ज्योत समाना
1: मिट गए गवन पाए विश्राम
0: नानक प्रभ के सद कुर्बान श्लोक
1: सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले
0: बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी
1: जिसके अंतर राज अभिमान
0: सो नक पाति होवत स्वान
1: जो जान है मैं जो बनवंत
0: सो होवत पृष्ठा का जंत
1: आप को कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे भोजन परमावे
1: धन भूम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे
0: नान की है मुक्ति आगे सुख पावे
1: धनवंत हो कर गर्भावे
0: तरण समान का चंग न जावे
1: बहु लश्कर मानुक ऊपर करे आस
0: पर मित्रता का हुए विनाश
1: सब ते आप जाने बलवंत
0: होए जाए पसमंत
1: सेना बदे आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगाह परवान
1: कोट कर्म करे हो तारी
0: शरण पावे सकले बरथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगाह को कैसे कवे
1: आप को जो भला कहावे
0: इसे भलाई निकट न आवे
1: सर्व की रेन जा का मन होए
0: कहो नानक ताके निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझ ते कश होए
0: तब इस सुख नाही कोए
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब तारे को बैरी मीत
0: जब लग नेचर नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: रब कृपा से बंधन टूटे
0: गुरु को साधना अनक हो छूटे
1: सहस कटे लख कोट तावे
0: रत्न आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग विखिया के करे
0: नैतिक तावे कब कब मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सुपन मनोरथ फिर से सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: प्रभागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करने हार
0: इसके हाथ कहां विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप प्रभु सोए
1: जो किस पीनो सो अपने रंग
0: सब ते दूर सब हो कै संग
1: दूजे देखे करे विवेक
0: आपे एका पै अनेक
1: मरे न बिनसे आवे न जाए
0: नानक सधी रह समाए
1: आप उपदेश समझे आप
0: आपे रचिया सब के साथ
1: आप कीनो आपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: कोसते भिन्न कहो किस होए
0: आंत अंतर एक सोए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद के नै बखियानी
1: सत सत सत सब कीना
0: कोट मदय के ने बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनुरूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: कट कट सुनी सर उन बखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जप नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत शरण जो जन पर सो जन उदर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत का दुखन हार जा कटे
0: संत का दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत का दुखन सुख सब जाए
0: संत का दुखन नरक में पाए
1: संत का दुखन मत हो ही मलीन
0: संत का दुखन शोभा दे ही
1: संत के हथे को रखे न कोई
0: संत का दुखन थान भ्रष्ट हो
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग नंदक भीतर
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन का दुखन काग ज्यो लवे
1: संतन का दुखन सर्प जोन पाए
0: संत का दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन का दुखन तृष्णा मह जले
0: संत का दुखन सब को छले
1: संत का दुखन तेज सब जाए
0: संत का दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाउ को नाही
0: नानक संत भावे ता ए पी कत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक कन टिक न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज ते हीन
0: संत का निंदक दुखिया अर्दी
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत के निंदा दुख मैं दुख
0: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा अपवित
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लागे
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते तरे
1: संत के दुखी को ना ही ठाऊ
0: नानक संत भावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी हर बीज ते टूटे
0: संत का दुखी किते काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उद्यान परमाइए
0: संत का दुखी उजड़ पाई है
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा
0: जो सास बिना मृत की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस नाही
0: अपन बीजा पे ही खाए
1: संत के दुखी को अवर न रख नहार
0: नानक संत भावे ता लय उबार
1: संत का दुखी इउ बिल लाए
0: ज्यों जल बे होन मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे
0: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटे अकेला
0: ज्यों बवार तिल खेत माहे दुहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: कीर्तन दुखा तो रही पया
0: नानक जो तिस भावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइए
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइए
1: संत के दुखी की पूजा ना आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख ना त्रिष्टे कोई
0: जैसा भावे तैसा कोई होए
1: पया कीर्तन मिटे कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर तिसकी हो करने हार
0: सदा सदा तिसको नमस्कार
1: रब की उसत करहु दिन रात
0: तिसे त्यागो सास गिरा
1: सब कछ वरते तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेला करने हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम दे
0: वट पागी नानक जन से श्लोक
1: तज हो सियान पुसुर जन हो सिमरो हर हर गाई
0: एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए अष्टपदी।
1: मनुख की टेक बिरसी सब जान,
0: देवन पौ एक है भगवान,
1: जिसके दिया रह अगाहे,
0: और न तृष्णा लाग आए,
1: मारे राखे एको आप,
0: नानक कै कृष्णा ही हाथ,
1: जिसका हुकुम भू सुख होए,
0: जिसका नाम रख कंठ परोए,
1: सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए,
0: नानक बिघन न लागे कोए,
1: उसत मन में कर निरंकार,
0: कर मन मेरे सत व्यवहार,
1: निर्मल रसना अमृत पियो,
0: सदा सहेला कर ले जियो,
1: नैनो फेक ठाकुर का रंग,
0: सह संग बिन सह सब संग,
1: चरण चलो मार्ग गोविंद,
0: मिटे पाप जपिए हर बिंद,
1: हर हर कर्म श्रवण हर कथा,
0: आदर ज्ञान नानक उज्जल मथा,
1: बड़ भागी ते जन जग माहे,
0: सदा सदा हर के गुण गाहे,
1: राम नाम जो करे विचार,
0: शीतल मंतक नि संसार,
1: मन तन मुख बोले हर मुखी,
0: सदा सदा जानो ते सुखी,
1: एको एक एक पछानै,
0: ए तुत कियो सो जी जानै,
1: नाम संग जिसका मन मानिया,
0: नानक तने निरंजन जानिया,
1: गुर प्रसाद अपने आप सुजै,
0: जिसकी जानो तृष्णा बुझै,
1: साध संग हर हर जस कहत,
0: सर्व रोग त्यो हर जन रहत,
1: अन दिन कीर्तन केवल बखियान,
0: रस्तमा सोई निर्वाण,
1: एक ऊपर जिस जन की आसा,
0: जिसकी कटिए जम की फसा,
1: पार ब्रह्म की जिस मन भूख,
0: नानक दसन लागे दुख,
1: जिसको हर ब्रह्म मन चिते आवे,
0: सो संत सोहेला नहीं डुलावे,
1: जिस प्रभु अपना कृपा करे,
0: सो सेवक को किसते डरे,
1: जैसा सत ऐसा दृष्ट आया,
0: अपने कार्य में आप समाया,
1: सोधत सोधत सोधत सीजया,
0: प्रसाद तत् सब बुझया,
1: जब देखो तब सब शमूल,
0: नानक सो सूक्ष्म सोई स्थूल,
1: मैं किस जन मैंने किस मरे,
0: अपन चलते आप ही करे,
1: आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट,
0: आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट,
1: आपे आप सगल में आप,
0: अनक जुगत रच था प्यो था,
1: अवनाशी ना ही किस खंड,
0: धारण धार रहे ब्रह्मांड,
1: लख पे पुरख प्रताप,
0: आप जपाए था नानक जाप,
1: जिन प्रभु जाता सो सो पावंत,
0: सगल संसार उदर तन मंत,
1: प्रभु के सेव सगल उदारण,
0: प्रभु के सेवक दुख विसारण,
1: आपे मेल लय कृपाल,
0: गुर का शब्द जप पै निहाल,
1: उनकी सेवा सो ही लागे,
0: जिसनो कृपा करे बट भागे,
1: नाम जपत पावे विश्राम,
0: नानक तन पुरख को उत्तम कर मान,
1: जो किस करे सो प्रभु के रंग,
0: सदा सदा पसै हर संग,
1: सह सुपाई हो वह सो हो,
0: करने हार पछाणे सोए,
1: प्रभु का किया जन मीठ लगाना,
0: जैसा सरता सा दृष्टाना,
1: जिसकी उपजे तिस माही समाई,
0: सुख निदान।

श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वे विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंगे फेरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साथ लगे प्राणी विस्माद संयोग विस्माद विजोग विस्माद भोग विस्माद भोग विस्माद शिव तुष्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद रा

उडुडरावा चाटे पाए देखे लोग शेकर जाए रोटियां कारण पूरे ताला पिछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपो निरंकार सच नाम।

निरंकार है नहीं लगे नरक न जाइए जियो पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाइए जे लोड़े है चंगा अपना कर पुनो नीज सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेश करें दिया ये।

पौड़े बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चित लाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेब की संतोखी जिन सचो सच त्याया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुख तो धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

पौड़ी सच्चा साहेब एक तुझने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिल गए सच पाया, जिनके हृदय सच बसाया, मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया

0: पहला पड़ गड्डी लदिए पड़ भरिए साथ पड़ बेड़ी पाइए पड़ गड़िए खास पढ़िए है जेते बरस बस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेके एक गल और हो में जखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया ते ता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या

0: काल पूर्ण वर्त्या कल काल बेताल बियो बीज पतले के अब क्यों कुबेदार जे को है तौक में रुती हुरत होए नान पाहे बारा को रे रंग ना सोए पैविच खुमचड़ा ये सनुपातन होए नान पक्ति जे रपे पूरे सोए ना कोए
1: महला पहला लब पाप धोए राजा मेहता कूड़ हुआ शिकदार काम ने इज्जत पूछिए।

0: कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बदा मन रहे
1: और बिन ज्ञान ना होए पड़ी पड़ा होवे गुनगा साधन मारिए ज

0: तुवा पूरा तपे का सत गिर तुवा हो काजुगरा थगन का कूड़ा गैर तुवा हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर स्वामी सच में ऐसा सच रहे सबको सच समावे रिग कह रहा प्रभु राम नाम देवा मैसूर नाले प्रस्त जाहे नानक तुम मुख अंतर।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पठानी अमलकिया
1: चारे वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाप भक्त करनी।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आखे पाए हुए प्राणा सटिए भी फिर पाया होर नानक तग न टुटे जे तग होवे जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे शाला ही ससूत दरगे अंदर पाइए तग न टूट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पवे नितारी तग न पैरी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी बे तग आया पे बते।

ओडिशा महोदय कृपा करता सही कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म बनाए सी हुक्म ने होवे प्रमाण तक।

पौड़िया पिकरणा क्यों कला पे हित धारिये देखे किता अपना तर्क चिपकी सारिये जो आया सो चलसी।

थोड़ी चक्कर लगे चक्रे जो चले खसमे पाए हुरमत तिसनो अगलियो वजो पी दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैर अंदर पाए बचो गवाया गला मोहे मोहे पाना खाए जिसदा दिता खावना तिस गया शाबाश नानक हुक्म ना चले।

कहाँ मात एक न मानियो। सिमरेत शास्त्र वेद सब बह भेद कह हम एक न जाने ओ श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहे ओ सब तो हे बखाने दोहरा।

इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया, गुर प्रसादी हर मन ने वसिया, पूर्व लिखिया पाया। कह नानक एहो शरीर प्रवान होवा, जिन सतगुर स्यो चित लाया। ए नेत्र मेरे हो हर तुम मह जोर तरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नजरी हर निहालिया। एहो विस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझे आ जा वेखा, हर एक है हर बिन अवरना कोई। कह नानक एह नेत्र अंध से, सत गुर मिले दे बदृष्ट होई। ए श्रवण हो मेरे हो, साचा सुनने नो पठाए, साचा सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनहु सत बाणी। जित सुनी मन तन हरिया होवा, रसना रस समाणी, सच अलख विडाणी, ताकि गात कही ना जाए। कह नानक अमृत नाम सुनहु पवित्र होवहु, साचा सुनने नो पठाए। हर जी गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पौन नौ दुवारे, प्रगट किए दसवा गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए भावन ही, एक ना दसवा द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाव नव निध, तिसदा अंत न जाई पाया। कह नानक हर प्यार जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया। एहो साचा सोहिला साचा घर गावहो, गावहो ता सोहिला घर साचा, जिथे सदा सच त्यावहे, सचो त्यावहे, जा तुद भावहे, गुरमुख जना बुझावहे। एहो सच सबना का खसम है, जिस बगसे सो जान पावहे। कह नानक साच सोहिला,

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

0: छठ बह करवार सबको पूरा पे होवे कट ना कोई आखे पद प्रमाण पिछे पई है नानक तू ले जा पे महला पहला
1: बदी सब जग नानका सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारदियां सबनी छाला मारियां करता क्रिस हो।

0: कन सुतकन पहला तवारी खाए सदमे बदो जम पर महला पहला
1: सब सुत पर मह दूजे लगे जाए जम

ये जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी ना है, जन्म तो अखां दे खुलदे ही मनुख दियां अखां कुछ खोज रही ने, लग रही ने। कुछ विद्वान ऐसा कहने एक तलाश का ना ही मनुख है और मनुख है जीवन भर की तलाश। जन्म तो ही मनुख की चेतना मनुख दे प्राण कुछ लब रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं। खोज खोज के जो लभे है जो मिले है उस नाल तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति किवें होनी है इसका पता भी कोई नहीं, इसका बोध भी कोई नहीं। तो तलाश जारी है जीवन दर जीवन जन्म दर जन्म अनंत काल तो। इस वास्ते कुछ विचारक कहने ने अनंत तलाश का ना ही मनुख है, मनुख है एक तलाश का नाम, कुछ खोज रहे हैं कुछ लभ रहे हैं। दोहरावा मैं, खोज खोज के जो लभे है उस नाल तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति किवें होनी है इसका पता भी नहीं, इसका बोध है। फिर विद्वान कहने ने मनुख तृप्ति लग रहा है, तृप्ति तो बिना और कुछ भी नहीं चाहिए। मनुख रजेवा लग रहा है, रजेवे तो बिना मनुख नु और कुछ भी नहीं चाहिए। जो रज जाए उन्हों राजा कहने ने, राजा दे अर्थ जो रज गए और कोई इस दे अर्थ नहीं। जो रज गया राजा, जो भूखा है भिखारी, तलाश है राजा होने की, जमया भिखारियां की तरह जीविया भिखारियां की तरह, यकीन जानो मर गया भिखारियां की तरह। मरदे दम तक तलाश ते जा रही है, खोज ते जा रही है। खोज खोज के जो लभे है उस नाल ते रजेवा होया नहीं, तृप्ति होई नहीं। तो जो रजेवा ही नहीं होया तो फिर राजा नहीं है, कि जे राजा नहीं है तो फिर भिखारी है। जे मंग जा रही है तो मंगता है, जे भुख जा रही है तो भिखारी है। भुखा भिखारी होता है, रजे होया राजा होता। प्रथम मनुख की खोज का केंद्र जमीन ए धरती रही है। धरती ने मनुख की झोली विच अन्न पाया, धन पाया, तन दियां जितनियां लोड़ां ने इहदी झोली नूं भरे, लेकिन जमीन मनुख नूं रजा नहीं सकी, रजा नहीं सकी।

ज्ञानपूर्वक श्रवण करना पड़े। तन दिया लोड़ा कोई बहुत ज्यादा नहीं, जो पशुआ की लोड़ा ने वही साड़ी लोड़ है, पर तन की लोड़ नो जग मन लोभ बना लेना है। एक निका जहां मैं उदाहरण दे दिया, जैसे भोजन की भुख है तो ठीक है, मनुख दो रोटियां तीन रोटियां खा लेगा, चलो चार पांच खा लेगा, त्रिपत हो गए, तन ते राज गए, तन ते राजा हो गए। लेकिन मन कहता है स्वाद ते आ रहा जे और खाई, भुख नहीं है ये खा रहे है, ये लोड़ नहीं है लोभ बन गया, ये तन की लोड़ नहीं है ये मन का लोभ बन गया। इस वास्ते कई ते कहने ने की करिए, पेट ते भर गया है पर मन नहीं भर गया, मन भरदा भी नहीं, क्यों? तन दियां लोड़ां मन दियां लोड़ां ही नहीं है, पर तन दियां लोड़ां नूं भ्रांति करके मन ने अपनियां लोड़ां समझ लिया। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा, जैसा मन मन ले पर मन ले। आपदी ज्ञात ले अर्ज करा, जो मन मन लैंदा है वो है, जो मन नहीं मनता वो मन की दुनिया च नहीं है। सवाल ये नहीं है कि वो वस्तु वो हस्ती है या नहीं, सवाल ये नहीं, सवाल ये है मन मनता है कि नहीं। अक्सर मनुख कह देता है पढ़िया तो है पर की करिए मन नहीं मनता, सुनिया तो है पर की करिए मन नहीं मनता, वेख्या ते है पर की करिए मन नहीं मनता। जो मन मनता ही नहीं वो मन का हिस्सा नहीं बनेगा, मन का हिस्सा वही वस्तु वही हस्ती बनती है जिन्हों मन मन लेता, मन मन लेता, मन पदार्थ नो मन लेता है परमात्मा नो नहीं मनता, मन परिवार नो मन लेता है निरंकार नो नहीं मनता। एक बहुत वड्डी सच्चाई है जिन्हों खुले दिल नाल कबूल करना होता है, मन धन नो मन लेता है मन धर्म नो नहीं मनता, मन पूरे दे पूरे परिवार नो मन लेता है संसार नो मन लेता है मन करतार नो नहीं मनता। जी तुसी आखो साडा मन मनदा है क्योंकि गुरुद्वारे आया, मन मनदा है ताई ते आया, कोई मनुख कह सकदा सी मंदिर जा रहे हैं गुरुद्वारे जा रहे हैं मस्जिद जा रहे हैं नमाज पढ़ रहे हैं पूजा पाठ कर रहे हैं जप तप कर रहे हैं कथा कीर्तन सुन रहे हैं मन मनदा है, गुस्ताखी माफ ते माफ कर देना। गुरबाणी इस तरह कहती है कोई लखां करोड़ां च इक अद्धा मन मनदा है बाकी नहीं मन। इस संबंध च मैं दो श्लोक तुहाडे सामने रखदे हां ताकि गल पूरी स्पष्ट हो जाए। ये दो श्लोक एक ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा, एक भगत सिरमौर श्री कबीर जी दा। ये दो श्लोक जिन्हां बाणियां विच हैगे ने उन्हां बाणियां दा सिरलेख इक्को ही है, गौड़ी महला पंजवां बावन अखरी। धन गुरु अर्जन देव जी दा इत्थे श्लोक बावन अखरी बाणी दा नाम है, गौड़ी श्री कबीर जी बावन अखरी। अखरां दी महिमा दे उत्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने पट्टी लिखी है आसा राग दे च, गुरु अमरदास जी ने पट्टी लिखी है आसा राग दे च, अखरां दी महिमा दे उत्ते बावन अखरी लिखी है गौड़ी राग दे च गुरु अर्जन देव जी ने और गौड़ी राग च भगत कबीर जी ने अखरां दी महिमा गाई है, क्यों? आवाज ते पशुआं कोल भी है, कौआ भी काय काय करता है, शेर भी गरजदा है, गौ भी बोलदी, पंछी भी चहचहांदे हैं, आवाज ते पशुआं कोल भी है अल्फाज नहीं है, धुन ते पशुआं कोल भी है अखर नहीं है, अखर नहीं है। तो धुन तो आवाज

परमात्मा की प्राप्ति की थी भगत। इस सीधे परमात्मा के बोल नहीं पकड़ सके, जिन्होंने पकड़े सन उन्होंने जुड़ के उन्होंने मन के ये पार उतरे। जो इस तरह सफलता नु प्राप्त होया सी उन्होंने कहने भगत। इतनी श्रद्धा सी, इतना विश्वास सी कि अवतार दे हर बोल देते भरोसा कीता, पैगंबर दी हर शिक्षा देते विश्वास कीता, गुरु दे हर बोल देते भरोसा कीता। और उस भरोसे ने उना बोलां दे सदके पुचा देता भगत। पर ए बोल सिद्धे जिना दी पकड़ दे चा गए खला दे च। और ये बोल हर वक्त मौजूद ने। मैं एक दफा फिर दोहरा दिया, ठाकर हमरा सदबोलन था। हर वक्त परमात्मा तो ये बोल आ रहे हैं, हर वक्त गुरु नानक दी पकड़ दे चा गए, कृष्ण दी पकड़ दे चा गए। और महाभारत दे मैदान जंग दे ये जो गीता है ये ज्ञान कुरुक्षेत्र दे च जंग दे च निकले है। अर्जुन दे प्रश्न और कृष्ण दे बोल, उना बोला नु कहने ने भगवान दे बोल, परमात्मा दे बोल। ते परमात्मा अमिट है, इत्थे कह दे कृष्ण अमिट है, शरीर ते सुपना सी रुखसत हो गया, वो बोल अमिट ने। वाकई गीता अमिट है क्योंकि बोल ते परमात्मा दे ने, ईश्वर दे ने। कृष्ण आए चले गए, पर वो जो भगवान शब्द का उच्चारण कर रहे सन भुलेखा पै गया अगे चल के। ये भगवान दे बोल ने, भगवान कह रहे हैं। मैं शब्द जोड़े है ऋषि वेद व्यास ने, क्योंकि गीता लिखती रूप दे उन्होंने जगत दे सामने रखी, श्री कृष्ण ने स्वयं नहीं रखी। बस इतों थोड़ा जहा मुगलता दे। परमात्मा दे बोल कृष्ण जी ने पकड़े, ते कृष्ण दे इना बोलां नूं लिखती रूप देंदे ने व्यास। तो थोड़ी अपनी रंगण चाढ़ गए, कुदरती गल है अपनी रंगण चाढ़ जाणगे। आपदी ग्यात लई अर्ज करां, एक कवि एक कविता बयान करे ते हुण कोई उस दे अर्थ करन लगे तो कुछ ना कुछ अपना रंग चाढ़ जाएगा, कविता दे अर्थ भी कर जाएगा और कविता नू कुछ अपने रंग भी दे जाएगा। लाजमी हू बहु वो नहीं हो सकती, ये भी मैं अर्ज कर लिया। एक आम साधारण कवि दी कविता दी हू बहु उस ढंग नाल व्याख्या नहीं हो सकती। तो कृष्ण ने जिहड़े बोल बोले, अर्जन नू समझाया, हू बहु किस तरह लिख सकते सन व्यास, तो कुछ अपनी रंगत चाड़ गए ने। जिथे जिथे उन्होंने अपनी रंगण चाड़ी है उथे उथे एकदम गल प्रगट हो जाती है, नहीं कृष्ण इस तरह नहीं कह सकते। वक्त दा अवतारी पुरुष, महान ज्ञाता, और जिसनु मैदान जंग देच भी कहण की जरूरत है, ए अर्जन तू एक निमित्त है, तू करता नहीं है। वो जो ये कहना है ए मेरा गुरु ए मेरे भरा, इन्हों मार के मैं की खटना है, तू निमित्त है, तू कौन है मारन वाला, तू नहीं मार सकता, तू स्वभाव दा क्षत्री है, सूरवीर है, और नहीं लड़ेगा ता भी तेरे दिल दिमाग देते ऐसा बोझ रहेगा, तेरे अंदर लड़ाई जारी रहेगी, ये करना ही पड़ेगा। तू करता नहीं है, निमित्त है, और अपना करतापन एक पासे कर दे, इस जंग देच भी तू परमात्मा नाल जुड़ जाएगा, युद्ध भी तेनु समाधि लीन कर देगा। अगर तेरा कर्तापन तेरे नाल है तो तेरा त्याग भी तेनु परमात्मा नाल नहीं जुड़न देगा, तेरा त्याग भी तेनु ईश्वर नाल नहीं जुड़न देगा, क्योंकि तेरा कर्तापन मौजूद होगा उत्थे। ये गहरी गल अर्जन दी पकड़ दे आ गई, उन्हें सुटे शस्त्र फिर चुक ले, प्रभु मैं समझ गया, भगवान मेरी समझ दे चाल गई, मैं पकड़ लिया थोड़े बोलां। जो परमात्मा दे बोलां नूं सीधा पकड़े अवतार, तो जो परमात्मा दे

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जां कॉल किरण @604581190।